0: हेलो गाइस, तो अभी आ चुके हैं हम बिहार में और देखिए हमारे पीछे कितना काला काला बच्चा है, नंगा पंगा, और ये सब है बिहारी, सॉरी सॉरी बीमारी।
1: ए बबुआ, है ना का बोले बिहारी? अबे तब तबड़ाक तबड़ाक मारेंगे ना।

0: this is the Hindu. We are here at Jantar Mantar, New Delhi. And as you can see behind me, there are so many protesters who have gathered here. The Delhi police has imposed restrictions under Section 163 of the BNSS and have explicitly mentioned that no permission for this kind of a procession has been granted so far. This protest has gained momentum after Sonam Wangchuk was forcibly hospitalized. Let's see how the protest goes on as the protesters are still demanding the resignation of the Union Education Minister Dharmendra Pradhan.
1: जो नीट का पेपर लीक हुआ है, एक बार हुआ, दो बार हुआ, बार-बार हो रहा है। इनसे ये अनपढ़ लोग बैठा दिए हैं। इनसे ये नहीं हो रहा है, इनसे समझ नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है इन पर कुछ भी।
0: आपको क्या लगता है इनके हटने से चेंज आएगा?
1: चेंज नहीं आएगा पर डर तो होगा एक। ये हटेंगे और कोई और आएगा तो वो नहीं कर पाएगा ये सब।
2: ये मेरे डोमेन में एसएससी का पेपर आता था, मुझे आता था तो मैंने दिया। मेरे नंबर जो इस बार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो नंबर थे वो 75 मार्क्स थे। तो क्या ये मेरी गलती है कि आपने इजी शिफ्ट मेरा नंबर रखा? तो क्या एग्जाम देते वक्त नहीं पता होता बच्चे को कि ईजी है कि हार्ड है? अब ये हुआ है कि मेरे 75 मार्क्स से 10 नंबर काट के 65 कर दिया। मैं इन लिस्ट था और मैं आउट ऑफ द लिस्ट हो गया। पुलिस कांस्टेबल का जो रिजल्ट आया उसमें कंटिन्यूस 38 लोगों के नाम थे, मींस वंस लास्ट रोल नंबर 167, 168, 169। क्या ये पॉसिबल है कि एक ही पेज पे सारे लैब के बच्चे एक बार में पास हो जाएंगे? और अगर आप रिसर्च करेंगे इस बारे में तो वो पेज आपको मिल जाएगा जहाँ पे 38 कैंडिडेट लगातार पास हुए हैं। आप ये सोचो कि मुझे फौज भी ज्वाइन करना है, मैं सरकार के भी अगेंस्ट हूँ, ऐसा लग सकता है लोगों को, बट मैं अपने देश के अगेंस्ट नहीं हूँ। देश सरकार नहीं है, बीजेपी देश नहीं है।
3: वैसे तो हमारा तो प्लान नहीं था आने का, बट आई एम वेरी इंकरेज्ड बाय दिस ऑल क्राउड। आई मीन लुक एट दिस क्राउड, आई एम ओनली 14 इयर्स ओल्ड, आई एम इन 10th स्टैंडर्ड, आई एम डिजायरिंग टू बी अ डॉक्टर, बट आफ्टर सीइंग दिस ऑल लीक्स प्रोग्राम आई बी लाइक माय कॉन्फिडेंस, आई गॉट वेरी अंडर कॉन्फिडेंट एंड मैंने सोचा मैं कभी नहीं कर पाऊंगी ये, मेरे को ये परस्यू ही नहीं करना चाहिए इस कंट्री में। ये सोच भी नहीं सकती हूँ मैं कि मैं कुछ कर भी सकती हूँ।
4: बदलो बदलो आज की शिक्षा,
5: नहीं तो मारूंगी पड़ेगी।
4: बदलो बदलो आज की शिक्षा,
5: नहीं तो मारूंगी पड़ेगी।
4: जागे युवा हुए तैयार।
0: Behind me you can see the rapid action force as well as the heavy police deployment with police personnel and also the tear gas launchers. Even at some distance there are water cannons and the entire area is layered with barricades, heavily barricaded.
6: पुलिस अपनी कार्रवाई में लगी है कि कब हमें मौका मिले और इस प्रोटेस्ट को खराब करें, क्योंकि जो सरकार हमारी मौजूदा बनी हुई है वो इधर को ध्यान नहीं दे रही है। मैं बच्चों के मेरा बच्चा नहीं आ पाया, मैं एक बाप बन के आया हूँ, मैं किसी अपने बच्चे के बाप हूँ, तो मैं प्रोटेस्ट में हाजिर हुआ, मैं हाजिरी देने आया हूँ। आने वाले वक्त में मैं समझता हूँ कि मोदी सरकार नहीं रहेगी और प्रधान को तो इस्तीफा देना ही होगा। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमाने का राज बदल दो, इंकलाब जिंदाबाद।
0: और आज जो हम देख रहे हैं शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से नस्तनाबूद कर दिया गया है, इसे रोकने के लिए और उसमें शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने के लिए हम इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं, क्योंकि आज देख रहे हैं भारत के कोने कोने से जनता यहाँ पर उपस्थित हुई है, छोटे बच्चे से लेके यंग जनरेशन और हमारी एज के जो सीनियर सिटीजन है। मैंने बहुत बुजुर्गों को 80-90 साल के लोगों को यहाँ पे देखा है, वो क्यों आए हैं? वो अपने बच्चों के लिए नहीं आए हैं, हमारे बच्चे तो बड़े हो चुके हैं। यहाँ पे हर व्यक्ति इसलिए आए हैं कि हमारा देश बचना चाहिए, क्योंकि हजारों सालों से अगर हमारा देश गुलाम हुआ वो इसलिए कि शिक्षा व्यवस्था को खत्म कर दिया गया था और आज फिर से वही प्लानिंग है, शिक्षा व्यवस्था के ऊपर ही उन्होंने घाव घाला है ताकि शिक्षा व्यवस्था खत्म हो जाए और ये देश फिर से गुलाम हो जाए, किसी के गुलाम हो जाए और वो जो कहे वो सिर्फ क्यों उनका सुनते रहे, इसलिए किया जा रहा है।
7: We'll keep you updated, we'll keep you posted about all the developments that happen throughout the day.